0: பன்னிசை கேட்டோம். நேரில் இன்னும் சில நொடிகள் தொடர்வது ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்தும், அதனை தொடர்ந்து மாநில செய்திகள் புதுச்சேரியிலிருந்தும் அஞ்சலாக கேட்கலாம்.
1: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. In a major boost to the India Semiconductor Mission, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the CG Semi-Outsourced Semiconductor Assembly and Test OSAT facility at Sanand in Gujarat a short while ago. Developed under the India Semiconductor Mission with an investment of over 7,500 crore rupees, the facility marks a major milestone in the country's tech manufacturing journey. Prime Minister Modi is currently addressing the program, so let's go over live to Sanand to listen to his address.
2: Design centers khulenge aur phir yahan se naye startups bhi niklenge. यही क्लस्टर की ताकत होती है. एक उद्योग सैकड़ों उद्योगों को जन्म देता है, सैकड़ों उद्योग लाखों रोजगार पैदा करते हैं, और ये लाखों रोजगार पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदल देते हैं. और ये सिर्फ सानंद में ही नहीं हो रहा, देश के अनेक राज्यों में भी सेमीकंडक्टर के क्लस्टर बन रहे हैं. साथियों, आज भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर के इस उभार से सभी उत्साहित हैं.
1: Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery cum petrochemical complex to the nation in Pachpadra in Balotara district. A greenfield refinery is an industrial processing plant built from scratch on undeveloped clean land. Addressing the program, Prime Minister Modi said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर

0: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says, India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate, and in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। पांच साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे हम डिजाइन इन इंडिया मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है
0: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini-India where engineers and professionals from various states are working under one roof to power the global digital economy. The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे
0: Addressing at the occasion, Union Minister Ashwini Vaishnaw announced that India will have 5 operational semiconductor plants by the end of 2026. He emphasized that chips produced at the Sanand plant will cater to diverse industrial applications and will be exported to global markets, including the United States, Japan and Europe.
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है
3: टुडे इंडियाज थर्ड सेमीकंडक्टर प्लांट इज बीइंग लॉन्च्ड द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड द फर्स्ट प्लांट ऑन 28th फरवरी द सेकंड प्लांट ऑन 31st मार्च एंड टुडे ऑन 4th जुलाई द थर्ड प्लांट गिवन द स्पीड विद व्हिच द प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड 12 प्लांट्स इन द कैबिनेट एंड विद कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्टिंग इन 3 आउट ऑफ दोस 12 प्लांट्स अ न्यू वेव ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंडियाज सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज हैज इमर्ज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे
2: आज दुनिया भर में भारत की सेमी कंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है
0: अर्लियर अपॉन रीचिंग सानंद द प्राइम मिनिस्टर टूर द हाई